सूदः बिरद पयाऊ प्रसाक्षैन मुख पियाऊ बैठ कव दयन हुनियर गुण गुण कछु न बुझ जाय बख्शि हो तव नानक सी जाय जिह प्रसाद तरु पर सुख बसह सुत प्रात मीत बनता संहसह जिह प्रसाद पीवह सीतर जरा सुखदायु पवन पावे कमला जिह प्रसाद भोगह सब रसा सगर समग्री संसात बसा दीने हस्त पाव करन नियतर रसना तिसह त्याग और संरचना ऐसे दुख मूढ़ व्यापी नानक लिहु प्रव्यापिया अंत जो रखन हार ते स्यों प्रीत न कर गुवैर जाकि सिवा नवनिद पावै ता स्यों मूढ़ मन हिंडावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जांद दूरे जाकि टहल पावै दरगह मैन ते सहब सारा मुगदया जान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपैर रतन त्या कौड़ी संगरचय सा छोड़ झूठ संग वचय जो छड़ना सो अस्थिर कर्म वन जो होवन सो दूर पुरान छोड़ जाय दुख श्रम कर संग सहाय दह पर हर चंदन देव उतारा तोय करत प्रीत भसम संग होय अंकूप मह पतत विकरा नानक काट देहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक उपचारा कर धन रात बाहर पीख अंतर मर माया शब सनाह काश कराय छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान सनानंत्र व्यापार उपस्वानंत्र।

सुनाव पूजन अनुस्वाद मिथ्या चरणों पर विकार कौता मिथ्या मान पर लूलवा मिथ्या तान नहीं पर उपकार मिथ्या वास्त विकार बिन बुझी मिथ्या सब सफल दिह नानक हर नाम लय बिरथि सागर की आर्जा साज बिना कहे होत सूचा बिरथ नाम बिना तन अंध मुख आवत ताक दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रथ बिहाय मेघ बिना जंखित जाय गोबद भजन बिन ब्रथ सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तन तन तिय जन जिह काट बस्यु हर नाऊ नानु तक बल बल जाऊ रह तेवर कशवर कुमावत मन नह प्रीत मुखम गण लावत जानन हर प्रभु परवीन बाहर बिहन का

साध जन की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख गुजर हुवत साध संग व सगरी खोवत साध घं बेटे अभिमान साध घं प्रगटाय सो गया साध घं बुझाय प्रभु निराय साध संग सब होतन बेराय साध घं पाग नाम रतन साध संगी कुपर जतन साध की महिमा वर्ण कौन पुरानी नैन साध सुबह ब्रह्म सुमान साधु संग गोचर मिला साधु हम सदा पुर फुलाय साधु संग वह वह पंचा साधु संग मृत रह पुंचा साध संग हुई सब गिरी साधु संग रोहर बैन साधु संग न कतु तावे साधु संग स्थित मन पावे साधु संग वायदिन साधु संग नानु प्रभु सुप्रसन्न साधु संग दुष्मन समीत साधु के संग महापनीत साधु संग के सिंह नहीं बैर साधु के संग न बीगा।

सुफल उफला ब्रह्म ज्ञान संग सगरे उधार नानु ब्रह्म ज्ञान जपाय सगर संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का भाषा प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहजन व्यास नानु ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बीता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुई अचिंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञान करायु प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दर बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञान का बैल बल जाई है ब्रह्म ज्ञान का खुग जय महेश्वर नानु ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान का सकल मन माही ब्रह्म ज्ञान का कौन जान भेद ब्रह्म ज्ञान को सदा दिश ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मित कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञान की गत ब्रह्म ज्ञान जाना है ब्रह्म ज्ञान का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीवा नहीं मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञान का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान आव निरंकार ब्रह्म ज्ञान की शोभ ब्रह्म ज्ञान बनी नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का तन श्रोक उतार जो अंतर नाम सर्व में पीख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ बरस सकल निहतार अष्टपदी मिथ्या नाह रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिय रूप न पीख नेत्र साधकी टहल संत संगीत करण ना सुना काहु की निंदा सब तु जाने उसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरा मन की वासन मन दे डराय इंद्रिय जीत पंज दोहते रहत नानकूट मध्य को ऐसा परस वैष्णो सो जहु परसो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत वह निकर्म दह वैष्णो का निर्मल धर्म पाहु फल की इच्छा नहीं बाछाय केवल भगत कीर्तन संग राजाय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर उद कृपाल अव दृढ़ अवरह नाम जुपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सत्संग पापा मालक हुए दस भगवती की बात उत्तम हुए भगवंत की टहल करा नित नित मन तन अरबा बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक सब भगवती भगवंत का उपावे सुपंडित जो मन प्रबुद राम नाम आत्म सोद राम नाम सार रह पीवे सुपंडित का उपदेश जाग जीवे हर की कथा हृदय बसावसु पंडित फिर जो नया वेद प्राण समर्थ बुझाए मूल सुखम है जन सथूल चह वर्णा को दी उपदेश नान कुछ पंडित को सदा दीस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चह वर्णा मह जपै को नाम जो जो जपै तुस्की गात हो सा संग पावे जान को कर कृपा अंतर उतार उपास प्रीत मुक्त पात्र का उतार सर्व रोग का अवखंड नाम कल्याण जू मंगल गुण गायम काहु जुगत कित न पाइया धर्म नानक देह मेला जस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तुसका नाम सत राम दास आतम राम तिहन अद्रि आया दाह संतन पाई तिन पाई।

प्रभु की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुक्ता शोक कहावे तहरकतः शोक सदानंद तह नियोगतः सुवर्ण तय सुसमाटित सामृत तह विकाटी तहसमान तहमान तरंग तह सारा जान जो वरताय साई जुगत नानक हो पुरख कही आय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राख तह सदन राय अभी करण करावन जोग प्रभ पावे सोई फन होक बसरे।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी काट काट सुने श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत का दुख न आर जा कटै संत का दुख जमत नहीं छुटै संत का दुखन सुख सब जाय संत का दुख नरक महा पाय संत का दुखन वात हुए मलीन संत का दुख सुवत हीन संत के हते का रखा न कोय संत का दुख थान प्रष्ट होय संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग नंद गुबी तरै संत के दुखन दे मुख पावै संतन का दुखन कागज लवै संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा मै जलै संत का दुखन सब कोई शलै संत का दुखन तीज सब जाय संत का दुखन नीच नीचाय संत दुखी का था कुंदाहि नानक संत पावे तां उही पीकत पाहि संत का नंद कुमहत ताहि संत का नंद खंडी कन्ना पाई संत का नंद को महाहतियारा संत का नंद को परमेश्वर मारा संत का नंद कराय दीन संत का नंद को दुखियार दीन संत के नंद का सर्व रोग संत के नंद का सदा विजोग संत के नंदा दुख मह दुख नारंग संत पावे न उसका भी हुए मोख संत का दुख सदा पवित्र।

काश करे सोई सुखमान भूला काहे फिर आ जान कौन बस आई तेरा संग लौट रहे रास लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माही नानक पद सिद्धि कर जाहि जिस वखर को लैन तू आया।

कर देता। जिसकी शरण सर सुख पावे है, तिसका दर सब पाप मिटावे। और सियान सगरी शाट, जिस जन की मुसीबत लागा उन जान हुई तेरा नन। तिस जन की पूजा हो सत पैरा सलोक, सात पुरख जन जाने साधु तिसका नाम, तिसका संग सिख उतरा नन। खर गुन गाव अष्टपदी, सात पुर सिख की करा प्रत पार। शिव कौग्र सदा दयाल, सिख की गोर दुर्मत मन खेरे। गुरबचनी हर नाम उच्चर, सतगुर सिख के बंधन काट है। गुर का सिख बकार दे अट, सतगुर सिख को नाम तान दी। गुर का सिख डुबागी, सतगुर सिख का हरत बल सवार है। नानक सतगुर सिख का जीवन अल सुमार है। गुर का गृह सेव।

संसार केवल तनिता बंध मुक्त कह कौन जावि कह हर गुमा पार तब नर्क स्वर्ग कह कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाई तब शिव सकत कह हुकित ठाय जब आप है आप अपन जो तर तब कौन निडर कौन का डर अपन चलता करने यार नानक ठाकुर गुमा पार अविनाशी सुख अपनासन तय जन्म वर्ण कहु कह विनाश जब पूर्ण करता प्रभ सोई तब जम की त्रास कह हुके सोई जब अवगत अगोचर प्रभि कतव चित्र गुप्त कह पूछत लिख जब नाथ निरंजन अगोचर गादी तब कौन छुटे कौन बंधन बाधी अपना बाप ही आचर जा नानक अपन रूप बाप ही हो पर जा जह पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कह हुत होता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शार क्षेत्र लगत कह कीस जह जो स्वरूप जो संग सुमाव तह कह पूकवन त्रवताव करुण करावन करण नान कर दिका नाह सुमार जब अपने स्वभाव संग बनाई ताब कौन माय बा मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद देव कह कुचीन जब अपना आप आपुर तार तब सगन अब सगन कह विचार जह अपन ऊच अपन अब नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा विस्मन विस्म रह विस्मरा नानक अपनी गत जान हुआ जह अशाले अशेद अभेद समाय ऊहा के सब आव माया अवस्कवा आदि सतेहु गुण का नाह प्रवेश जह कह कई भगवंता कौन अचंत।

जाहो। तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिलका मान। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्ताथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कमण सुबेला वक्त कमण।

अंक कालान काल अनभूत अंग आपा भंग गतमित अपार गुणगण उदार मुणगण प्रणाम निरपैन काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदाख लख करोड़ सच्चे सुल्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज भमान सो नरकपाती हो स्वान जो जान मैं जो बनमंत बिशो विष्टाका जन आप सो करमन कहावै जन्म रै बो जौन परमावै धन भूमका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगै सो पावै धनवंता होय कर गरबावै त्रिन समान का संग न जावै बो लश्कर मानक ऊपर करियास पल भीतर ताका होय विनाश पल भीतर ताका होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिलमै होय जाय पशमंत किसै ना बदा आप अहंकारी धर्म राय इस करे कुवारी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करै हो धारी श्रम पावै सगले बृथारे अंक तपस्या करी अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अंक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दरगै को कैसी गवै आपस को जो भला कहावै तसे भलाई निकलना आवै सर्व की रेन जाका मन होए कौ नान ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझते आकाश होए तब इसको सुख ना ही कोई जब ए जाना मैं किस करता तब ला गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मी तबला नेचल ना ही की जबला मोह मगन संग माए तबला धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटा गुरप्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख कोट धावै तृप्तना आवै माया पाचा पावै अन को विख्या के करै नै तृप्तावै खपका मरा बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोथ बिखे सब काजा नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करना हार इसका हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रास होए।